0: कभी ऐसा हुआ कि किसी ने आपके हाथ कोई कीमती चीज थमा दी हो या बहुत जरूरी काम आपको सौंप दिया हो और कहा तुम संभाल लेना? अजीब सा गर्व होता है ना, और साथ में थोड़ा सा डर भी लगता है कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। बीते हफ्ते हम भारतीय स्पोर्ट्स फैंस पर ऐसी ही एक जिम्मेदारी आ गई थी। जानते हैं ना कि नई दिल्ली का हमारा इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम इन दिनों पूरे बैडमिंटन जगत के आकर्षण का केंद्र बना हुआ था, क्योंकि 19 साल बाद भारत को मौका मिला था BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप्स का आयोजन करने का। मानो सिर्फ एक टूर्नामेंट नहीं था, ये बैडमिंटन का त्योहार था। हर शॉट में रोमांच था। हर रैली में धड़कन थी। हर पॉइंट के साथ जुनून सातवें आसमान पर चढ़ता दिखता। किसी जश्न को यादगार बनाने के लिए सिर्फ मैदान सजाना काफी नहीं होता, कोर्ट पर खिलाड़ी चाहिए हैं, उनके साथ खड़े फिजियो और सपोर्ट स्टाफ चाहिए हैं, पर्दे के पीछे आयोजन की बारीकियों को संभालते लोग चाहिए हैं, दुनिया भर से आए मेहमानों के लिए मेहमान नवाज चाहिए हैं, और सबसे बढ़कर स्टैंड्स में उमड़ते वो दर्शक जिनकी तालियों से खेल में जान पड़ती है। इन सब ने मिलकर इसे सिर्फ एक विश्व चैंपियनशिप नहीं रहने दिया, इसे बैडमिंटन का उत्सव बना दिया। शायद इसलिए तो टूर्नामेंट के खत्म होने पर BWF की प्रेसिडेंट खुनिंग लिस्वाड्रा टूल ने कहा,
1: What a week New Delhi has given us. India waited 17 years for this moment and India made every year count. The BWF World Championships 2026 have won praise from every corner of our sport. That praise belongs to people.
0: बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के सचिव संजय मिश्रा भी भावुक नजर आए।
2: हम ये सक्सेसफुली कंडक्ट करेंगे, ये मैं कॉन्फिडेंट था, हमारी टीम को पूरा विश्वास था कि ये टूर्नामेंट हम बहुत अच्छे से करेंगे, लेकिन इतना सक्सेसफुल होगा, इतने अच्छे से होगा, शायद इसकी हमको भी उम्मीद नहीं थी, लेकिन ये पिछले 6 महीने की स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री की, साई की और BI की टीम की ये मेहनत था और इसका हमको ये बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है।
0: आकाशवाणी की टीम को भी इस जश्न का हिस्सा बनने का सौभाग्य मिला और रेडियो के जरिए हमने कोशिश की कि इसकी हर धड़कन आप तक पहुंचे, लेकिन उस धड़कन की असली रफ्तार तो कोर्ट पर उतरे खिलाड़ी ही होते हैं। 56 देशों से करीब 400 खिलाड़ी शिरकत करते नजर आए, कई कीर्तिमान स्थापित हुए। भारत का प्रदर्शन भले ही मिला जुला रहा हो, लेकिन कांस्य पदक जीतने वाली ट्रीसा जॉली और गायत्री गोपीचंद पुलेला की जोड़ी का प्रदर्शन सालों तक याद रखा जाएगा। आइए अन्य विजेताओं से आपकी

0: मुलाकात कराते हैं। शायद इस टूर्नामेंट की सबसे बेमिसाल कहानी फ्रांस के खिलाड़ियों की रही। 2026 से पहले इस देश ने BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप्स में कोई मेडल नहीं जीता था, पर इस बार हेडलाइंस फ्रांसीसी खिलाड़ियों ने ही बटोरी है। मेन सिंगल्स में खिताब जीता एलेक्स लैनियर ने, फ्रांस के वो खिलाड़ी जिनकी भावनाएं अक्सर चेहरे पर नहीं उतरती, लेकिन कोर्ट पर उनका खेल रोकना नामुमकिन था। विक्टर लाई और कोडाई नारोका जैसे नामचीन खिलाड़ियों को इन्होंने धूल चटाई और गले में स्वर्ण पदक पहन लिया।
1: आई थिंक इट्स डेफिनेटली ह्यूज फॉर आवर फ्रेंड्स, डेफिनेटली ह्यूज फेल्ट ऑल द सपोर्ट अबाउट द फैंस, वी आल्सो गॉट ऑल द सपोर्ट फ्रॉम ऑल द स्टाफ बिहाइंड, एंड आई थिंक डेफिनेटली टुडे वाज अ डे फॉर फ्रेंच बैडमिंटन एंड इट वाज अ डे for the whole staff also. I mean, I didn't feel that I won for me today. Today it was for friends.
0: वुमन सिंगल्स में दक्षिण कोरिया की आन से युंग का खिताब जीतना किसी के लिए कोई हैरानी की बात नहीं थी, लेकिन अचंभा इस बात का है कि टूर्नामेंट के दौरान चोट से जूझती हुई आन से युंग ने एक भी गेम यानी एक भी सेट नहीं हारा। सेमीफाइनल में चीन की वांगजी ही के खिलाफ भले ही 1 घंटे 1 मिनट का संघर्ष करना पड़ा हो, लेकिन वहां पर भी सीधे सेटों में युंग ने जीत हासिल की और एक बार फिर दुनिया को दिखाया कि क्यों उन्हें ऑल टाइम ग्रेट माना जाता है। वो कहती है,
2: There are a lot of people is supporting me. I want to thank all of my fans supporting me. This keeps me going and just giving me energy. So I'm so excited and very enjoy. I think it's support me, they're cheering on me. This is my motivation. And I, there are a lot of people, my team coach, head coach, my family, or fans, trainer, or supporting me. This is my keep going.
0: Men's doubles में चीन से आने वाली लियांग और वांग की जोड़ी ने मानो पेरिस ओलंपिक्स के फाइनल में मिली हार का बदला लिया। सामने 2 साल पहले ओलंपिक चैंपियन बनी एरन चिया और सोवी यिक की मलेशियाई जोड़ी थी, जिनको फाइनल में 2 सीधे सेटों में मात देकर चीन की इस जोड़ी ने गोल्ड मेडल अपने नाम किया।
3: And now, our men's doubles world champion 2026 from China, Liang Weiqing and Wong Cheng.
0: वुमेन्स डबल्स में एक बार फिर दक्षिण कोरिया चमका। बेक और ली की जोड़ी ने चीन की टान और लियू की वर्ल्ड रैंक नंबर 1 जोड़ी को फाइनल में 2 सीधे सेटों में मात दी, और इस जीत के बाद भारतीय समर्थकों की हौसला अफजाई को भी अपने इस जोश भरे प्रदर्शन का एक कारण बताया।
4: She's saying that we are highly, you know, happy that after 31 years that our country has won a medal. They are very excited about the Delhi crowd, that while playing each and every match, they were really excited that the crowd were cheering for them. And as a player, it's a really great honor for them.
0: मिक्स डबल्स में भी इतिहास रचा गया। टॉम गिक्वेल और डैफनी डेलरू की जोड़ी ने फाइनल में एक बड़ा उलटफेर करते हुए चीन से आने वाली फेंग और हुआंग की जोड़ी को मात दी और बन गए विश्व विजेता।
5: Yeah, we are really, really happy, really proud. It's amazing. Like 10 years ago, no French player can thought about that. So it's amazing. We are really proud.
0: इसी के साथ इस विश्व चैंपियनशिप में फ्रांस ने 2 गोल्ड मेडल जीते। उनकी कोच टीना ने बताया कि कैसे जनवरी में हुए इंडिया ओपन का अनुभव उनके सभी खिलाड़ियों के काम आया।
6: I'm very, very happy, of course, and happy that the work that we've been doing is paying off on the right time. We had the World Championship as a number one goal for the year. We worked specifically on playing in this hall because we had already tested it in January. So we worked on how to improve the areas that we needed to be better in.
0: अब गौर करते हैं भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर। शुरुआत ट्रीसा जॉली और गायत्री गोपीचंद पुलेला की जोड़ी से, जो सरप्राइज पैकेज बनकर उभरी। विश्व रैंकिंग में 39वें पायदान वाली इस जोड़ी से उम्मीदें ठीक ठाक प्रदर्शन की थी, लेकिन कोर्ट पर जिद, जुनून और जज्बे से भरा खेल दिखाते हुए इस जोड़ी ने वुमेन्स डबल्स में कांस्य पदक हासिल किया। इसके साथ ही एक कीर्तिमान भी स्थापित हुआ। 2011 से हर साल BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप्स में कम से कम 1 पदक जीतने वाले अब सिर्फ 2 देश हैं, बैडमिंटन का पावर हाउस चीन और दूसरा भारत। इस जीत पर और इसी हफ्ते अर्जुन अवार्ड मिलने की घोषणा पर ट्रीसा कहती हैं।

0: into that club. I feel like so happy. There is a lot of journey we have in future. I feel like this is just a start. We just need to take this as a positive and in a confidence way. I feel like this all moments and getting this medal and even that Arjun Award this week when they announced, I feel like that also give us some other boost in this tournament.
1: इसी श्रेणी में अपना पहला वर्ल्ड चैंपियनशिप्स खेल रही काविप्रिया सेल्वम और सिमरन सिंघी की जोड़ी भी थी, जिन्होंने पहले राउंड में दमखम दिखाते हुए अपना मुकाबला सीधे सेटों में जीता था, लेकिन यूं कहें कि ड्रॉ ने उनका साथ नहीं दिया। राउंड ऑफ 32 में सामना हुआ बल्गेरिया की मजबूत गैब्रियला स्टोविया और स्टेफानी स्टोविया की जोड़ी से, जिनके विरुद्ध उनको हार मिली।
2: इट वॉज प्रीटी ग्रेट एंड इंडिया में हो रहा है, हमारा फर्स्ट वर्ल्ड चैंपियनशिप है एंड वी हैड दैट प्रेशर, यू नो लाइक एवरीबॉडी हैज दैट होप इन अस दैट यू नो यू शुड विन एट लीस्ट फ्यू मैचेस एंड व्हेन वी केम ऑन कोर्ट वी वर नर्वस बट देन व्हेन वी स्टार्टेड प्लेइंग वी केम इनटू द मोमेंटम वी फॉरगॉट एवरीथिंग एंड वी वर देयर।
1: मेन सिंगल्स में चर्चा का केंद्र लक्ष्य सेन होने वाले थे, लेकिन पहले ही दिन डिफेंडिंग चैंपियन और वर्ल्ड रैंक नंबर वन शी यू ची को हराने के बाद आयुष शेट्टी भारतीय बैडमिंटन के पोस्टर बॉय बन गए।
3: प्लेइंग वर्ल्ड नंबर वन इज नेवर इजी, इट्स अ फर्स्ट राउंड फॉर मी एज वेल। आई वुड से इवन आई हैव नॉट सेटल्ड इन, बट आई थिंक इट वाज अ टफ वन फॉर बोथ ऑफ अस एंड देयर वर नो बी मोमेंट्स एज आई सेड, बट या हैप्पी टू पुल इट ऑफ।
1: उनके शुरुआती परिणाम मानो किसी सुनहरे सपने जैसे थे, लेकिन फिर राउंड ऑफ 16 में आकर उनका ख्वाब चकनाचूर हुआ जब इंडोनेशिया के आलवी फरहान के खिलाफ उनको हार मिली।
3: Definitely a lot to learn, especially this match, a tough one to digest as well, but we'll go back, analyze and I think a lot of positives as well from this tournament, but I think definitely a lot to learn and a long way to go.
1: Dusri taraf, Lakshya Sen, round of 32 mein USA ke Garrett Tan se haare, jiski umeed shayad kisi ne nahi ki thi. Women singles mein, jahan teenage sensation Unnati Hooda ka safar round of 32 mein khatam hua, तो वहीं पीवी सिंधु ने मानो घड़ी की सुइयां पीछे ले जाते हुए अपने पहले दोनों मुकाबलों को एक तरफा अंदाज में जीता, लेकिन प्री क्वार्टर फाइनल में उनके सामने चीन की वांग जी यी की कड़ी चुनौती थी, जिसको सिंधु पार ना पा सकी।
4: Sad about it. I should have converted that. That's how it is. That's how sport is. You lose a lot, you win a lot. I mean, when you lose, you need to deal with it and bounce back stronger from your mistakes. I think that's how it will be and it should be. थोड़ा और पेशेंस रहना था मेरे साइड से. बहुत अच्छा चल रहा था गेम वन, गेम टू और गेम थ्री भी बहुत इक्वल चल रहा था. The last three points just changed the game is what I felt. I should have been a little patient.
1: Men's doubles में MR अर्जुन और हरिहरन अमसा खरुनन की जोड़ी राउंड ऑफ 32 के आगे नहीं बढ़ सकी, लेकिन चोट के बाद वापसी कर रहे गोल्डन बॉयज चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रांकी रेड्डी सराहनीय प्रदर्शन करते हुए क्वार्टर फाइनल तक पहुंचे। वहां इवेंचुअल चैंपियंस लियांग और वांग ने उन्हें मात दी।
5: वी प्लेड डिसेंट, आई वुडंट से वी प्लेड बैड, बट जहां पर हमको लगा कि हमें पॉइंट मिलेगा, मिल नहीं पाया क्योंकि दे वर प्लेइंग क्वाइट अ सॉलिड गेम। अ लॉट ऑफ द पॉइंट हमें लगा फिनिश हो जाएगा, वो फिनिश नहीं हुआ और काफी अच्छे से उन लोग उसको ऑफेंस में कन्वर्ट कर रहे थे। थोड़ा डिसअपॉइंटिंग है, बट आई थिंक दैट इज हाउ स्पोर्ट इज।
1: मिक्स डबल्स में रोहन कपूर और ऋत्विका गाड़े एवं आसित सूर्या और अमृता प्रमुथेश के साथ भारत की तीन जोड़ियां हिस्सा ले रही थी, लेकिन केवल ध्रुव कपिला और तनीषा क्रास्टो ही राउंड ऑफ 16 तक पहुंच सके, जहां एक बार फिर भारत के आड़े चीन आ गया। कुल मिलाकर कई सकारात्मक संकेत देखने को मिले। और बताते हैं पुलेला गोपीचंद।
6: थोड़ा अनफॉर्चुनेट रहा है कि थोड़े से क्लोज मैचेस हम लोग ने हारे हैं। वुमेन सिंगल्स में दोनों मैच हम लोग काफी क्लोज हारे हैं और मेन सिंगल्स में भी आयुष का पहला दिन बहुत ही अच्छा था और द थर्ड डे वाज अ लिटिल बिट ऑफ अ डिसअपॉइंट, बट ओवरऑल डिसेंट इन दैट सेंस। आई वुडंट बी टू वरीड अबाउट इट। सम डेज दीज थिंग्स डू हैपन, बट द नेक्स्ट टाइम अराउंड आई एम होपिंग दैट और द एशियन गेम्स आई एम होपिंग फॉर बेटर।
1: कुछ खिलाड़ी ऐसे भी थे जिनके लिए ये सफर सिर्फ कोर्ट तक नहीं था, ये अपनी जड़ों तक लौटने का एक खूबसूरत बहाना था। दुनिया के अलग अलग कोनों में पले खिलाड़ी इस बार सिर्फ भारत खेलने नहीं आए थे, शायद अपनी मिट्टी को थोड़ा और करीब से महसूस करने आए थे। जैसे यूएई का प्रतिनिधित्व करने वाली खान बहने माइशा और ताबिया।
7: तो मेरी मम्मी मुंबई से, पापा मध्य प्रदेश से, तो वो लोग जॉब के लिए यूए में आए थे, तो हम लोग बॉर्न ब्रॉट अप यूए में है, स्कूलिंग सब उधर ही करा है, लेकिन अभी थोड़े साल पहले ही यूए को रिप्रेजेंट करना शुरू करा है। इससे पहले स्टेट नेशनल सब इंडिया में एमपी की तरफ से खेलते थे।
1: उसी देश के झंडे के नीचे वुमेन सिंगल्स में खेल रही थी प्राकृति भारत।
8: I'm from Tamil Nadu, but I was settled in the Gulf. I live in Dubai right now, and I've joined the national team over there, and I've been playing for a year and a half.

0: नाउ रिप्रेजेंटिंग यूएई।
1: अलवर में जन्मी इशिका जायसवाल ने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का प्रतिनिधित्व किया और राउंड ऑफ 16 के लिए क्वालिफाई भी किया।
2: सो आई एम फ्रॉम अलवर राजस्थान एंड आई वाज बोर्न हियर, सो आई एम स्टिल एन इंडियन पासपोर्ट। या आई फ्रीक्वेंटली कम हियर, ऑल माय फैमिली इज हियर। देयर इज अ लॉट ऑफ इंडियंस इन आवर एकेडमी एंड बट नाउ यू विल बी सीइंग अ लॉट मोर इंडियन।
1: मेडल आए, कुछ उम्मीदें टूटी और कुछ नई उम्मीदें जन्मी, लेकिन सबसे बड़ी जीत शायद ये रही कि बैडमिंटन ने एक बार फिर सबको एक साथ ला खड़ा किया। भारत अभी इस खेल की महाशक्ति नहीं, मगर मंजिल की ओर बढ़ते कदम साफ दिखाई दे रहे हैं, और जब कदम बढ़ते रहें तो सपने भी बड़े होते रहते हैं। इन सपनों के इस सफर में हमारे साथ बने रहने के लिए शुक्रिया। आकाशवाणी की पूरी टीम की ओर से आप सभी का दिल से आभार। BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप 2026 के हर दिन की डिटेल्ड रिपोर्ट आप हमारे यूट्यूब चैनल पर सुन सकते हैं। प्रोड्यूसर शाहनवाज खान, एडिटर वंदना भारद्वाज और इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम से मोहम्मद शाहिद आजमी के साथ मैं दर्पण टिकिया।
3: आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है खेल गतिविधियों पर आधारित साप्ताहिक कार्यक्रम स्पोर्ट्स पल्स।

0: तो हो जाए सब दंग।
1: CIET प्रस्तुत करता है
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: सभी श्रोता मित्रों को विमलेश का नमस्कार
1: और अजीत का भी नमस्कार, जोहार और जय हिंद। आइए सुनते हैं एक सुंदर विचार जो हमें भेजा है लेवाई छत्तीसगढ़ से गुलाबदास मानिकपुरी, राजादास मानिकपुरी और रानी मानिकपुरी जी ने।
3: आपने समय के मूल्य और महत्व को बताते हुए लिखा है, हम समय को पकड़ नहीं सकते, बस उसके साथ चल सकते हैं। धन्यवाद आप सबको इस बहुमूल्य विचार के लिए
1: जी। और आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों हमें संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है सुधा, कविता, पंकज, आयुषी और मीहू का। उन्होंने लिखा है भटीपुरा उत्तर प्रदेश से। लिखते हैं, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी ने अपने शिक्षक की प्रेरणा के बारे में अपनी पुस्तक विंग्स ऑफ फायर में लिखा है। आगे लिखते हैं, दिनांक 31 जुलाई को हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के प्राणदाता और संगीत की कथ्य मौखिक सामग्री को लिपिबद्ध करने वाले अनेक संगीत पुस्तकों के रचनाकार, समग्र हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत को 10 थाटों में विभाजित करने वाले और लगभग 100 रागों का वर्गीकरण करने वाले संगीत के विद्यार्थियों के लिए ठोस पाठ्यक्रम तैयार करने वाले, साथ ही साथ सरगम लिखने की सुगम पद्धति के जनक पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी के संगीत में अतुलनीय योगदान पर विस्तार पूर्वक जानकारी प्रदान करने वाला कार्यक्रम सुनकर मुंह से बस यही शब्द निकले कि वाकई भातखंडे जी आधुनिक भारत में हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के पुनर्जागरण के अग्रदूत हैं। इस महान संगीत पुरोधा पर इतनी गहन जानकारी उपलब्ध करवाने वाली पूरी उमंग टीम को हम हृदय की अनंत गहराइयों से आभार और धन्यवाद व्यक्त करते हैं।
3: आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही विस्तार से कार्यक्रम पर प्रतिक्रिया दी। आपकी विस्तृत प्रतिक्रिया के लिए हम हृदय से आपका धन्यवाद करते हैं
1: जी। अगला संदेश हमें मिला है डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव तामुरिया, तुषार देव तामुरिया, डॉली बेबी, पूजा तामुरिया, राधिका, प्रभा देवी तामुरिया और मास्टर अल कबीर का।
3: ग्राम बंगला मटिया बालोद से शिव कुमार अंगारे, अंजनी अंगारे जी लिखते हैं,
1: श्लाघनीय का अर्थ है प्रशंसनीय। हिंदी के शब्दों की जानकारी देने का ये प्रयास हमें बहुत ही अच्छा लगा।
3: राजाजी नगर बेंगलोर से NR प्रसाद और अखिला प्रसाद जी लिखते हैं,
1: अजीत जी और विमलेश जी, आपके कार्यक्रम उमंग में हमारे राज्य कर्नाटक के कोडवा समुदाय और उनके उत्सव कैलपोद की बातें सुनकर हमें बहुत खुशी हुई। दरअसल मैं स्वयं कर्नाटक का होने के नाते इस विषय पर कुछ बातें जोड़ना चाहता हूँ।
3: कोडागु को कर्नाटक का कश्मीर भी कहा जाता है। कोडागु जिले को अंग्रेजी में मरकारा या कुर्ग

0: भी कहते हैं। इसी जिले ने हमें भारतीय सेना का पहला कमांडर इन चीफ KM करियप्पा दिया है। कोडागु ने हमें कई बेहतरीन हॉकी खिलाड़ी भी दिए हैं, जो भारतीय हॉकी टीम के कप्तान बने और विश्व कप विजेता टीम का हिस्सा रहे, जैसे MP गणेश और BP गोविंदा। इसके अलावा मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि कोडागु में हर साल कोडागु हॉकी उत्सव मनाया जाता है, जिसे हर साल अलग अलग कोडावा परिवार प्रायोजित करते हैं।
1: आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। और अब बारी है पिछले सप्ताह के प्रश्नों के उत्तर जानने की। तो हमारा पहला प्रश्न था, किसी दक्षिण भारतीय भाषा का शब्द बताइए जो आज हिंदी और कई भारतीय भाषाओं में बहुत प्रचलित हो गए हैं।
0: तो श्रोताओं, कई शब्द हैं, लेकिन सांभर, इडली, रसम, वड़ा और डोसा जैसे शब्द अब हिंदी के हो गए हैं
1: जी। और अब सुनिए हमारा अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न था, खाकी शब्द किस मूल भाषा से आया है।
0: खाकी शब्द फारसी से उर्दू भाषा में आया और फिर हिंदी में राख या धूल नहीं लेकिन रंग के अर्थ में बोला जाने लगा
1: जी। और अब सुनिए हमारा अगला प्रश्न, कुकून से बाहर निकलते समय तितली के शरीर से जो द्रव निकलता है उसे क्या कहते हैं।
0: कुकून से बाहर निकलते समय तितली के शरीर से जो द्रव निकलता है उसे हीमोलिम्फ कहते हैं। इसी द्रव के कारण उसके पंख उड़ने के योग्य बनते हैं।
1: और हमारा अगला प्रश्न था श्रोताओं कि नर्तकी सुधा चंद्रन किस नृत्य के लिए जानी जाती हैं और पर्वतारोहिणी अरुणिमा सिन्हा ने कब एवरेस्ट पर विजय प्राप्त की।
0: नर्तकी सुधा चंद्रन प्रसिद्ध भरतनाट्यम नृत्य के लिए जानी जाती हैं और पर्वतारोहिणी अरुणिमा सिन्हा ने 21 मई 2013 को सुबह 10:55 पर माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त की थी। तो ये थे पिछले दिनों पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। श्रोताओं, आप सबका आभार प्रश्नोत्तरी में भाग लेने के लिए
1: जी। और अब सुनिए हमारा आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है, थर्मामीटर या ज्वरमापी यंत्र का आविष्कार किसने किया था। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
0: थर्मामीटर या ज्वरमापी यंत्र का आविष्कार किसने किया था।
1: श्रोताओं, आप अपना उत्तर हमारे टोल फ्री नंबर 8800440559 पर या हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं। आप इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन को भी लगातार फॉलो कर सकते हैं।
0: और यदि आपको NCERT की पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करना है या हमारे शैक्षिक कार्यक्रम या ध्वनि पुस्तकों को सुनना है तो कृपया ये दो वेबसाइट के पते नोट कर लीजिए।
1: पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करने के लिए किसी भी सर्च इंजन में जाकर NCERT बुक्स PDF आपको टाइप करना है।
0: और यदि हमारे कार्यक्रमों को सुनना है या ऑडियो बुक्स तो YouTube पर जाइए और टाइप कीजिए NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल। ये विकल्प आपको मनचाही पाठ्य पुस्तकों पर ले जाएगा।
1: और अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम कैसे बना हिमालय।
0: कैसे बना हिमालय कक्षा 7 की समाज का अध्ययन की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में बताया गया है कि विश्व के सबसे युवा पर्वत हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई और इसे मोड़दार पर्वतमाला क्यों कहा जाता है।
2: साथियों नमस्कार, आइए करते हैं शुरुआत हिंदी के प्रख्यात कवि
3: विनोद कुमार शुक्ल जी की सुंदर कविता से।
2: उच्च हिमालय पर्वतराज, खड़ा पहनकर हिम का ताज,
3: ऊंचा मस्तक रख दिन रात, आसमान से करता बात।
2: हिमालय हमारा गौरव है, ऋषि मुनियों की तपोभूमि होने के कारण इसे देव भूमि भी कहा जाता है। यहाँ अनेक मठों और मंदिरों का निर्माण हुआ है। हिमालय वास्तव में भारत की आत्मा और गौरव का प्रतीक है। लेकिन क्या आपके मन में कभी ये जिज्ञासा उठी कि आखिर कैसे बना हिमालय।
3: तो आइए सुनते हैं एक नाटक,
2: कैसे बना हिमालय।
3: आज रिद्धि,
2: नव्या
3: और रिदित
2: सब बहुत खुश है
3: क्योंकि उनका परिवार
2: हिमालय क्षेत्र के भ्रमण पर दार्जिलिंग जो जा रहा है।
4: चलो चलो, दार्जिलिंग चलना है, बड़ा मजा आएगा, मैं तो खूब एंजॉय करूंगी।
5: मैंने सुना है बहुत सुंदर जगह है।
4: मुझे बहुत इच्छा थी इस टूर पर जाने की।
5: कितना अच्छा लगेगा जब हम हिमालय की गोद में कुछ दिन बिताएंगे,
4: पहाड़ों पर भी चढ़ेंगे, बड़ा मजा आएगा। अरे अरे जल्दी से चलो, पैकिंग भी तो करनी है,
5: बहुत मजा आएगा।
3: जहाँ वे रुके हुए थे वहाँ से दुनिया की सबसे ऊंची चोटी
2: माउंट एवरेस्ट साफ साफ दिखाई पड़ रही थी।
3: वे सुंदर दृश्य का आनंद उठा ही रहे थे
2: कि उनके कमरे के बगल में ठहरे हुए
3: डॉक्टर आदित्य भी वहाँ आ गए।
2: बातचीत होने लगी। जब सबने अपने परिचय दे ही दिया

0: तुम्हें पता चला कि डॉक्टर आदित्य जाने माने भूगर्भ शास्त्री है और अपने शोध कार्य के लिए यहाँ आए हुए हैं। चर्चा होने लगी, बस तो रिद्धि ने प्रश्न पूछ ही लिया।
1: सर, हमें कक्षा में टीचर बता रही थी कि हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ है, क्या पर्वतों का भी निर्माण होता है?
2: भाई बहुत अच्छा सवाल पूछा है तुमने। भाई ये सच है कि पर्वतों का भी निर्माण होता है। तो सुनो, बहुत समय पहले की बात है, करीब 20 करोड़ साल पहले की बात है।
1: क्या 20 करोड़ साल?
2: तब हमारी धरती नई नई थी, तब हमारे महाद्वीप आज की तरह अलग अलग नहीं थे, सारी धरती एक साथ जुड़ी हुई थी।
1: सारी धरती एक साथ जुड़ी हुई थी मतलब?
2: नव्या, अब भाई थोड़ा सा धीरज तो रखो, अब बताता हूँ, लेकिन उससे पहले ये बताओ कि हमारी पृथ्वी पर कितने महादेश हैं? विदित तुम बताओ।
3: ये तो बहुत आसान है, एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका।
1: रुको, मैं बताती हूँ।
2: तुम बताओ।
1: अफ्रीका, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया भी तो है। ऑस्ट्रेलिया को ओशेनिया भी तो कहते हैं।
2: बिल्कुल सही रिद्धि। उस समय हमारी पृथ्वी पर एक शांत और विशाल महासागर था, और महासागर का नाम था टैथिस महासागर। क्या नाम था?
4: टैथिस महासागर।
2: वाह,
1: ये जानना तो बहुत ही रोचक है। फिर क्या हुआ सर?
2: फिर हुआ ये कि पृथ्वी की आंतरिक गतिविधियों के कारण ये जुड़े हुए भूखंड धीरे धीरे एक दूसरे से अलग होकर खिसकने लगे।
1: अलग होकर खिसकने लगे?
2: अरे एक दूसरे से दूर होने लगे, कुछ एक दूसरे के पास भी आने लगे।
1: सर फिर तो वे बहुत तेज गति से खिसक रहे होंगे।
2: अरे नहीं नव्या, हर साल लगभग 3-4 सेंटीमीटर बस।
3: लेकिन सर हम तो बात कर रहे थे कि हिमालय कैसे बना।
1: सर ये बताइए ना, हिमालय कैसे बना?
2: बेटा मैं उसी विषय पर आ रहा हूँ। अच्छा अब आगे सुनो। उन दिनों हमारा भारत गोंडवाना नामक एक बहुत बड़े भूभाग का हिस्सा था, जहाँ उसका पड़ोसी अफ्रीका था। हजारों साल इसी तरह से निकल गए। समय के साथ साथ भूमि दो हिस्सों में बट गई, दोनों हिस्से एक दूसरे से दूर हो गए। वे दो हिस्से थे लॉरेशिया यानी यूरेशियन प्लेट और गोंडवाना यानी इंडियन प्लेट।
3: यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट?
1: सर आप तो टैथिस सागर के बारे में भी तो बता रहे थे।
2: अरे वाह, तुमने तो मुझे बहुत अच्छा याद दिलाया
1: जी।
2: देखो विशाल और शांत महासागर ये एक प्राचीन महासागर था, जो आज के भूमध्य सागर, अरब सागर और हिमालयी क्षेत्र के बीच फैला हुआ माना जाता है। इसी सागर की तलहटी भूमि की आंतरिक चाल के कारण गोंडवाना और यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे की ओर बढ़ने लगी।
1: फिर क्या हुआ सर जब प्लेट्स एक दूसरे की ओर बढ़ने लगी?
2: बेटा उसके बाद गोंडवाना लैंड यानी भारतीय हिस्सा टैथिस सागर एक दिन यूरेशियन प्लेट के करीब पहुंच गया। इस यात्रा में उसे लाखों साल लगे, लेकिन एक दिन अचानक एक जोरदार आवाज आई। गोंडवाना यानी इंडियन और यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकरा गईं।
1: अच्छा?
2: हाँ बच्चों, टक्कर इतनी जोरदार थी कि बीच की धरती की परतें मुड़कर ऊंची हो गईं।
3: सर मैं कुछ बताऊँ इसके बारे में?
2: हाँ बेटा क्यों नहीं।
3: ठीक वैसे ही जैसे यदि किसी कालीन या चटाई को दोनों तरफ से धक्का दिया जाए तो बीच का हिस्सा उठ जाता है।
2: बहुत अच्छे, और इसी प्रक्रिया में तुम जानते हो आगे क्या हुआ? इसी प्रक्रिया में जन्मा हिमालय। तुम्हें पता है आज भी हिमालय की ऊंचाई लगातार बढ़ रही है, क्योंकि इंडियन या गोंडवाना प्लेट लगातार यूरेशियन प्लेट की ओर बहुत धीमी गति से खिसकती जा रही है। दोनों ओर से दबाव बढ़ने के कारण

0: इस हिस्से यानी हिमालयी क्षेत्र की ऊंचाई बढ़ती जा रही है, इसीलिए तो हिमालय को मोड़दार पर्वत कहते हैं।
1: अब समझ आया सर, इसकी ऊंचाई कितनी बढ़ जाती होगी?
0: भाई बहुत अच्छा सवाल है। हिमालय में अब भी प्रतिदिन बढ़ने की क्षमता है, इसके अलग अलग अनुमान है। आमतौर पर कह सकते हैं कि साल भर में लगभग 5 मिलीमीटर और एक सहस्राब्दी यानी 1000 वर्षों में लगभग 5 मीटर।
2: सर एक खास बात तो हम भूल ही गए, तेथिस सागर का क्या हुआ?
0: भाई यही तो सबसे रोचक बात है। सच ये है कि तैथित सागर का क्षेत्र ही हिमालय पर्वत बन गया।
2: यानी क्या हम कह सकते हैं कि जहाँ कभी महासागर था वहाँ आज हमारा हिमालय है?
0: हाँ हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल कह सकते हैं।
1: लेकिन इसके क्या प्रमाण हैं?
0: भाई बहुत अच्छा सवाल पूछा है बेटी आपने। भूविज्ञानियों को हिमालय की ऊंचाइयों में आज भी समुद्री जीवों के जीवाश्म, शंख, सीप, समुद्री घोंघे और कोरल की चट्टानें मिली हैं। ये सभी जीव समुद्र में ही पाए जाते हैं। इन खोजों से सिद्ध हो जाता है कि कभी न कभी वहाँ समुद्र रहा जरूर होगा। वहाँ की बहुत सी चट्टानें भी ऐसी हैं जो समुद्र में ही पाई जाती हैं, जैसे चूना पत्थर और शेल आदि। ऐसी चट्टानें समुद्र की तलहटी में ही मिलती हैं।
1: अच्छा तो ये बात है।
0: बिल्कुल। एक और खास बात तुम्हें बता दूं, हिमालय कोई एक पर्वत नहीं है, ये बहुत विस्तृत और विशाल पर्वत श्रेणी है। इसकी लगभग 10 चोटियां हैं जो 8000 मीटर से भी अधिक ऊंची हैं। वैसे यदि सभी चोटियों की बात करें तो अलग अलग ऊंचाइयों की कुल 15000 चोटियां हैं, जिनमें सबसे ऊंचा है
3: माउंट एवरेस्ट।
0: सही जवाब। अच्छा बच्चों एक चीज और बताता हूँ, तिब्बती लोग इसे चोमोलुंगमा कहते हैं, जिसका अर्थ है जगत जननी, और पर्वत की उसी रूप में पूजा भी करते हैं। अच्छा बच्चों नेपाल के निवासी इसे सागर माथा कहते हैं, जिसका अर्थ है आकाश की देवी।
1: सर मुझे आज की बातचीत से एक बात और समझ में आई।
0: भला वो क्या?
1: वो ये कि दबाव कितना भी पड़े हिमालय की तरह ऊंचा उठना मत छोड़ो।
0: बिल्कुल सही बात।
4: तो साथियों अभी आपने सुनी हिमालय के निर्माण की रोचक कहानी, कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। और अब आपके लिए कुछ प्रश्न, पता लगाइए कि हिमालय किस प्रकार का पर्वत है। दूसरा प्रश्न है, हिमालय किन दो प्लेटों के टकराने से बना। कार्यक्रम में आपने सुना कि हिमालय की ऊंचाई प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, इस तथ्य से आपको क्या शिक्षा मिलती है? इस पर एक लघु निबंध या कविता लिखिए।
5: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कैसे बना हिमालय। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, ध्वनियांकन मंजू कुमारी, बाल कलाकार रिद्धि नव्या और रिदित, कलाकार दलजीत सचदेवा और प्रीति मोहन, नाट्य आलेख अजीत होरो, निर्देशन विमलेश चौधरी तथा ध्वनि संपादन एवं निर्माण सुरेंद्र कुमार। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया।

0: और अब सुनते हैं कार्यक्रम अवसर को पहचानिए।
1: ये कार्यक्रम एक यूनानी लोक कथा पर आधारित है जिसमें बताया गया है कि हमेशा अपने अवसरों को पहचानकर दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ना चाहिए, अन्यथा यदि देर हो जाए तो बीता समय और अवसर दोनों वापस नहीं आते।
2: नमस्कार साथी, आज हम आपके साथ साझा करेंगे स्पेन की एक प्रेरक घटना।
3: तो आइए सबसे पहले जानकारी लेते हैं स्पेन की।
2: स्पेन यूरोप महादेश में है। इसकी राजधानी मैड्रिड है। मैड्रिड कला और व्यवसाय का बहुत बड़ा केंद्र है। मैड्रिड के बाद स्पेन का दूसरा सबसे बड़ा शहर है बार्सिलोना।
3: यहाँ की राष्ट्रीय भाषा है स्पैनिश और मुद्रा है यूरो। यदि खेलों की बात करें तो यहाँ के मुख्य खेल हैं बुल फाइटिंग और फुटबॉल। ये दोनों ही खेल स्पेन में किसी राष्ट्रीय उत्सव से कम नहीं।
2: स्पेन संवैधानिक राजतंत्र के तहत संसदीय लोकतंत्र है। स्पेन के मुखिया यहाँ के राजा होते हैं। तो ये हुई स्पेन के बारे में थोड़ी जानकारी। आइए अब सुनते हैं स्पेन की ये प्रेरक घटना।
3: एक बार की बात है, स्पेन की राजधानी मैड्रिड में मूर्ति कला की प्रदर्शनी लगी थी। बहुत से मूर्तिकारों ने इस प्रदर्शनी में भाग लिया और अपनी अपनी कला का प्रदर्शन किया। सारी मूर्तियां एक से बढ़कर एक थी।
4: Marvelous.
2: लेकिन एक मूर्ति ऐसी थी जिसने लगभग सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। जो भी उस मूर्ति को देखता वो आश्चर्य में पड़ जाता।
5: ये किस तरह की मूर्ति है?
6: ये किस तरह की मूर्ति है?
7: ऐसी मूर्ति तो मैंने वाओ, वंडरफुल।
3: साथियों, आप पूछेंगे कि भला ऐसी कौन सी विशेष बात थी उस मूर्ति में जो उसने प्रदर्शनी में आए सभी लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा?
2: तो चलिए हम बता देते हैं। इस मूर्ति में खास बात ये थी कि ये मोम की बनी हुई थी और इसका चेहरा बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा था क्योंकि पूरा चेहरा लंबे लंबे बालों से ढका हुआ था।
3: मूर्ति के हाथ नहीं थे लेकिन हाथों की जगह दो पंख लगे हुए थे।
2: लोग सोचने लगे, भलाई कैसी बात हुई?

0: मूर्ति पत्थर की या किसी अन्य धातु से भी तो बनाई जा सकती थी।
1: इस प्रदर्शनी में बहुत से दर्शक आए। जो भी वहां आता उस मूर्ति के बारे में जरूर सोचता। लोगों की उत्सुकता लगातार बढ़ती चली गई। हर एक के मन में एक प्रश्न था,
2: ये मूर्ति मोम से क्यों बनाई गई है?
3: कलाकार ने मूर्ति मोम से ही क्यों बनाई?
0: तो हुआ ये कि बहुत से लोग उस पवेलियन में आकर पूछने लगे कि भला ऐसी मूर्ति का क्या मतलब है जो मोम की बनी हो, बालों की वजह से उसका चेहरा भी दिखाई न दे और उसमें पंख लगे हों।
1: उस मूर्तिकार ने बताया,
4: इस मूर्ति का नाम अवसर है। जीवन में अक्सर जब अवसर सामने आता है तो उसका चेहरा हम पहचान नहीं पाते, और जब तक उसे पहचानते हैं तब तक वह पंख फैलाकर उड़ जाता है।
0: लोगों ने उस मूर्तिकार के विचार की बड़ी प्रशंसा की।
5: ग्रेट, मार्वेलस।
3: हाँ, अवसर ऐसा ही होता है।
5: वंडरफुल।
6: हाँ हाँ
7: हम सहमत हैं।
0: लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी था, वो ये कि ये मूर्ति मोम से क्यों बनाई गई है। कलाकार ने बताया,
4: जैसे मोम पिघलता है उसी प्रकार अवसर भी लंबे समय तक बना नहीं रहता, वह भी धीरे धीरे पिघल जाता है। यानी मोम की भांति ही अवसर भी हाथ से निकल जाता है।
0: साथियों, कितना जरूरी है कि हम अवसर को सही समय पर पहचानें और उसका सदुपयोग करें, ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए। किसी ने कहा है, अवसर सूर्योदय की तरह होता है, यदि आप समय से नहीं उठते तो इसे देखने से चूक जाते हैं।
1: साथियों, यदि आप दुनिया के सफलतम लोगों के बारे में पढ़ेंगे तो पाएंगे कि ऐसे लोगों ने कभी भी अवसर को हाथ से जाने नहीं दिया। इस संदर्भ में कबीरदास जी का एक बहुत ही प्रचलित और लोकप्रिय दोहा है, काल करे सो आज कर,
0: आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुर करे का कब। अवसर सामने खड़ा है, इसका लाभ उठाइए।
1: कहीं ऐसा ना हो कि
0: जब तक आप पहचाने तब तक ये पंख फैलाकर उड़ जाए।
8: अभी आपने सुना कार्यक्रम अवसर को पहचाने। कार्यक्रम समन्वय डॉक्टर राजेश कुमार निमेश, कलाकार शालिनी सिंह और वैभव श्रीवास्तव, तकनीकी नियंत्रण बटी लैंगलिंगडो, ध्वनियांकन विकास सांगवान, निर्माण सहयोग तनु गुप्ता, निर्माण परामर्श वंदना अरिमर्दन और विमलेश चौधरी, आलेख निर्देशन तथा निर्माण अजीत होरो। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम अवसर को पहचानिए।

0: जी हाँ, जन जन होगा अब साक्षर उल्लास के साथ। आइए नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के इस अभियान में बटाएं हाथ उल्लास के साथ। उल्लास भारत सरकार की एक अनूठी पहल।
1: और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी कुसुम लता, जगबंधु
2: और मंजू जी के साथ विमलेश को कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
1: नमस्कार।
3: उमंग उमंग उमंग उमंग
4: நேர்கள் இதுவரை கேட்டது NCERT தேசிய கல்வியல் ஆராய்ச்சி மற்றும் பயிற்சி குழுமம் வழங்கிய விளம்பரதார நிகழ்ச்சி. நேரம் 3:59. இன்னும் சில நொடிகளில் தமிழில் செய்திச் சுருக்கம்.